0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: ईरान के साथ जारी तनाज़े के तनासुर में मशरक़ वस्ती में तायुनात अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन 9 माह की इजाफी ड्यूटी मियाद मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो रहा है। अपने मिशन के दौरान ये जहाज 250 से ज्यादा दिन मुसलसल समंदर में रहा और अब तकरीबन 5,000 एहलकारों के साथ अपने मरकजी अड्डे सान डियागो की जानब रवाना हो गया है। तायुनाती की मुदत में तोसी के बायस जहाज पर रसद की कमी और एहलकारों के हौसले पस्त होने से मुतलिक दावे सामने आए थे, तहम अमरीकी हुकाम ने इन दावों की तरदीद की है। USS इब्राहिम लिंकन की खित्ते से रवानगी के बाद मशरक़ वस्ती में इसकी जिम्मेदारियां अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वॉशिंगटन ने संभाली हैं। ईरान ने अमरीका की नई पाबंदियों को माशी दहशतगर्दी करार दिया है। तेहरान ने अमरीका की जानब से ईरान पर आयद की गई नई इकतसादी और तजारती पाबंदियों की मजम्मत की और इन्हें माशी दहशतगर्दी करार दिया है। ईरान वजारत खारजा ने मौजू से मुतलिक जारी करदा बयान में कहा है कि ये पाबंदियां ईरानी अवाम के खिलाफ अमरीकी सियासतदानों की 73 साल से जारी दुश्मनी और अदावत का तसलसल हैं। वजारत ने कहा है कि अमरीका की ईरानी शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक को निशाना बनाकर लगाई गई पाबंदियां माशी दहशतगर्दी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। रूस के सफीर बराए अक्वाम मुत्तहदा वासिली नेबेंसिया ने कहा है कि रूस ईरान पर अमरीका के साथ जंग खत्म करने की खातर मुजाकराती मेज पर वापसी के लिए कोई दबाव नहीं डाल रहा। उन्होंने मजीद कहा है कि तेहरान एक खुद मुख्तार रियासत है और इसे अपने फैसले खुद करने चाहिए। जुमेरात को न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब के दौरान इस सवाल के जवाब में कि क्या मास्को ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को ईरानी हुकूमत को अमरीका के साथ मुजाकरात की तरफ वापस आने पर

समय ये नशियात शॉर्ट वेव्स 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ पर सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। लीजिए आखिर में अहम खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन ने ऐलान किया है कि तुर्की ने मुल्क की साइंसी और टेक्नोलॉजी अफरादी कुव्वत को मजबूत बनाने के लिए एक नया इकदाम शुरू किया है। तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान ने मिस्र के वजीर खारजा बदर अब्दुल आती और सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान के साथ फर्दन फर्दन टेलीफोनिक मुलाकात की है। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शाम के वजीर खारजा असद हसन अल शीबानी के साथ मुलाकात की है। सामिन, इसके साथ ही हमारी आज की नशरियात इख्तिताम पसीर होती है। अपने मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और बहुत खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।